0: बजट खराब हो जाएगा उससे, क्योंकि हर रोज हम लोग टू व्हीलर इस्तेमाल करते हैं, कार इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा बजट जो है एकदम थोड़ा सा वो उसमें हो जाते हैं।
1: क्या कल दूध के दाम बढ़े, मिल्क प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़े
0: सब में, ये तो देखो कॉमन मैन के ऊपर ये भारी तो पड़ेगा ही, क्योंकि ना हमारा जो, लेकिन हमारे सैलरी में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये महंगा जो हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको वो नॉर्मल मैन के हर एरिया में जो है वो फर्क पड़ेगा।
1: सर आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, कितना इफेक्ट पड़ेगा आपको, क्या उम्मीद थी कि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे?
2: नहीं सर, देखो जो सरकार पहले से कह रही है कि क्या नाम है बढ़ेंगे, वो तो बढ़ना ही था, क्योंकि मीडिया मध्यों ने पहले हमें संचेत कर दिया कि तेल बढ़ेंगे, तो उस इफेक्ट तो पड़ेगा सर। अब एक मजदूर आदमी, आम आदमी कितना करेगा, हर चीज पे महंगाई बढ़ रही है, सरकार उसको नहीं देख रही है, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारा।
1: So yes, as you heard there, that yes, the people are definitely getting affected by this, the manner in which these rates have been increased, 3 rupees per litre for petrol and diesel. This is definitely going to put an impact on the wallets of the people out here across the country. But yes, over the last 2 months, 2.5 months, the manner in which the war in the Middle East has been going on, definitely it was on the expected lines that something like this could happen. We'll try and speak to a few CNG consumers as well. भैया आज सीएनजी के दाम भी बढ़ गए, 2 रुपए के आसपास, कितना इफेक्ट पड़ेगा आपको इससे?
3: हमारी गाड़ी नहीं है।
1: अच्छा,
3: मालिक की गाड़ी है, मालिक भरवाएगा। हाँ। हमारा क्या, हमारी तो तनख्वाह है, अगर हमारी जब गाड़ी हो ही नहीं हमारे पास, तो हम पे तो पड़ेगा नहीं कुछ।
1: कल दूध के दाम भी बढ़े, आज इसके दाम बढ़ गए, तो आपकी जेब पे असर पड़ेगा? नहीं
3: पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, मेरी तनख्वाह है 12,000 रुपए, उसमें दूध पे भी बढ़ रहे हैं, कल को फिर किराएदार के लिए मकान मालिक भी बढ़ाएगा, तो हम पे तो डिफेक्ट पड़ेगा। तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, तनख्वाह बढ़ी थी, अभी आंदोलन हुआ था, कितने 13,316 रुपए हुए, पहले मिल रहे थे 12,000 कुछ, तो कितनी बढ़ गई, तो वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा।
1: So there are a few more people who are still waiting in line to get their morning started over here. We'll get in a word from them. भैया आज सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं करीब 2 रुपए, कितना इफेक्ट पड़ेगा आपको, कितना असर पड़ेगा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इससे?
4: पड़ेगा भैया, बहुत ज्यादा ही पड़ेगा।
1: भाड़े में भी बढ़ोतरी होगी क्या?
4: पता नहीं सरकार क्या करता है, भाड़ा में तो कमी होते जा रहा है, बढ़ोतरी तो सीएनजी वाले कर रहा है, गाड़ी वाले कर रहा है, कमाई में तो कमी हो रहा है।
1: तो अब कैसे, अभी 2 रुपए यहाँ बढ़ गया है, कल दूध के दाम बढ़ गए, तो धीरे धीरे सब बढ़ते हैं,
4: बढ़ रहा है भैया, महंगाई बढ़ रहा है, भाड़ा कम हो रहा है, हम लोग को जो भाड़ा मिल रहा है वो कम हो रहा है, बाकी सरकार सारी चीज महंगाई करते जा रही है।
1: तो सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे?
4: यही करेंगे जो गरीब पे दया करे, थोड़ा इतना रहम करे जो गरीब जी ले, ये जीने के लायक तो नहीं छोड़ा है।
1: So this is definitely a catch-22 situation, whereas the per kilometer cost of autos and Ola Uber is going to increase and the fare is going to remain the same. But if at all the fare is also increased in such public transport, then yet again the impact of this is going to be on the wallets of the common
5: citizens. Very true. Anshul, stay with us. I'll come back to you just in a moment's time. We have SP MP Anand Bhadauria joining me on the broadcast. Anand ji, हमारे साथ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले समाजवादी पार्टी का फर्स्ट रिएक्शन इस पूरे प्राइस हाइक पे फ्यूल का, ये काफ़ी एक्सपेक्टेड था, जो स्थिति हम वेस्ट एशिया वॉर की वजह से पूरे दुनिया में देख रहे थे, बट फाइनली इंडियन कंज्यूमर्स को जो प्राइस हाइक है वो महसूस होगी, फ्यूल प्राइसेस दिख रहा है, दूध के प्राइसेस बढ़ गए, ऐसे बहुत सारे कमोडिटीज के प्राइस भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं लास्ट एक हफ्ते से, कुछ दिनों से, आप क्या कहना चाहेंगे?
6: जी आपको भी सुबह सुबह के नमस्कार। सवाल ये है कि ये सिर्फ पहले से ये प्रतीक्षित था, ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी माहौल बना रही थी, और केवल वेस्ट एशिया के युद्ध का असर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की विफलता भी है। कहीं ना कहीं जब सरकार को इंतजाम करने चाहिए थे तब सरकार भाषण दे रही थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक साल सोना मत खरीदिए, आप लोग डीजल पेट्रोल की बचत करिए, तभी लग गया था कि देश के अंदर जो अभी तक इन्होंने गुब्बारे में हवा भर रखी थी वो फूटने वाली है। सवाल ये है कि इतनी महंगाई कितनी बढ़ेगी, गरीब के ऊपर कितना असर होगा, और सरकार होती किस लिए है, सरकार जन कल्याण के लिए होती है।

तो मेरा जेंजी से सीधा सीधा, देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है कि ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है। ऐसे ही हर साल आप देखो, 2017 में पेपर लीक हुए, उसके चार साल बाद 2021 में हुए, उसके तीन साल बाद 2024 में हुए, उसके दो साल बाद 2026 में हुए, अब उसके एक साल बाद 2027 में होंगे, और हर साल पेपर लीक होंगे अगर आपने कुछ नहीं किया तो। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेंजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेंजी पे पूरा भरोसा है। ये देश आपका है, इस देश के नेताओं को इस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है।

0: act of desperation by a farmer in Maharashtra. Bhagwan Sable set 600 sacks of onions on fire after traders quoted a price of 1 rupee per kilo. The farmer from Tintaraj village in Dharashiv district had spent over 80,000 rupees per acre for cultivation. Earlier, he had sold 70 sacks of onions for just 4,000 rupees.
1: मैंने वो एक गाड़ी मार्केट में प्याज की लेके गया तो सिर्फ मुझे एक रुपए का भाव मिला जब एक रुपए का ही भाव मिल रहा है तो प्याज रख के मैं क्या करूं इसलिए मैंने वो 600 बोरी को आग लगा दी.
0: There is widespread resentment among farmers in Marathwada. Farmers in the region have faced a double blow this time, falling prices and unseasonal rains. They are struggling to recover even their production costs.
2: अभी मंडी में फिलहाल वक्त आपकी लागत तो सुन रही इतना भाव है
3: नहीं कुछ भाव नहीं उसको 1400 रुपए क्विंटल चालू है.
2: कितना रुपए क्विंटल जाना चाहिए
3: प्याज कम से कम 2000 रुपए क्विंटल जाना चाहिए.
2: सरकार से कुछ कहना चाहिए
3: हमें भाव चाहिए कम से कम 2000 रुपए क्विंटल
4: भाव चालू 100% 500 लोग खर्च ये आम्हाले 70,000 रुपये ते भी बाहर सगळे उधार आहे दुकानदारीच बी वरण फवारण्या सगळं बाहेरून आहे.
0: Most farmers are facing a debt problem. They are now hoping for relief from the government. Bureau Report, India Today.

0: Thank you for staying with India Today. I'm Suresha Sawant, and yes, we are standing by for Education Minister's media briefing that is to begin shortly. This is on the NEET paper leak after the leak gate. NEET re-examination that has been announced by the NTA to happen on the 21st of June. NEET re-exam that will happen on the 21st of June after the NEET exam that was held on the 3rd of May stood cancelled due to the paper leak. The National Testing Agency said that the NEET exam dates have been announced. Rather, the re-exam date on the 21st of June has been announced after the government's approval. Shortly from now, the news briefing will begin. That will be chaired by Dharmendra Pradhan, where he will answer questions. Now, it will be important to watch out whether there is also details shared on why the paper leak happened. Remember the case that is being probed by the CBI. The paper leak, or the guest paper as it was called, that saw an exact match of about 140 questions. The questions that actually appeared in the paper that was given by students on the 3rd of May. That has been cancelled. 21st of June is the re-exam. And let me take this to my colleague Amit Bhardwaj, joining us on the broadcast with further details. Amit, shortly from now, in fact, any moment when Union Education Minister Dharmendra Pradhan will begin with the news briefing. Are we also expecting answers on the paper leak? Because we understand that in 2024, Dharmendra Pradhan had dismissed the paper leak. He has said that there was no evidence really to support that the paper had leaked. That also has mounted to the anger of what has happened in 2026. A short while ago, there was also a meeting at Dharmendra Pradhan's residence over the paper leak issue. What's expected in this news conference?
1: Suresha, the press conference can begin any time. Union Education Minister Dharmendra Pradhan will certainly speak on the re-examination that is now slated to happen on June 21st. So he'll be here in this room where I'm sitting any moment from now and speak about the re-examination schedule and other details as well. So what we're given to understand that late in the night, he had held high-level meeting with the officials of the Education Ministry as well as the NTA. On the NEET examination, obviously there are three set of questions, as to how that paper leak happened, number one. Number two, how would the government ensure there is no leak in the re-examination? And third, the larger conspiracy case that the Central Bureau of Investigation is probing into as to whether the, links are also with the NTA, because NTA's role is now under a lot of scanner. With the Central Bureau of Investigation trying to find out whether the NTA officials were also linked to the paper leak, the allegations of paper leak. And there are other, in principle reforms which were suggested by the parliamentary panel as well as the high-level committee, whether the government is looking at those recommendations once again or not. So Dharmendra Pradhan could be speaking any moment from now here at the Modi. Thank you.
0: Oh, yes, absolutely. But what has been in the making until now, Amit, please do share those details, because like I said a short while ago, an important meeting that happened at Dharmendra Pradhan's residence and hectic parleys that have been underway ever since the paper has been cancelled, of the outrage against the NTA over the paper leak, and of course the protests that are being staged. There is widespread anger across the country over the repeated incidents of paper leak and why the government has not got in-depth into this issue. How they are actually tackling this issue over these days?
1: Well, there is anger, there is frustration in the aspirants as well as their parents. There is a sense of anxiety in the aspirants as well, because this is a very competitive exam. There are very few seats for which 22 lakh students compete every year. Having said that, the government is saying that they have brought a lot of reforms. Changes such as bringing transparent bottles, bringing transparent pouches. All of that was also introduced to ensure that no devices are being carried in guise of such elements into the examination hall. But the problem seems to be much bigger about the structure, and because paper leak, so to say, is happening again and again in the examinations being conducted by the NTA. So this is not limited to the NEET, rather at the larger question of the role of the NTA, the National Testing Agency, whether the minister would be also speaking on that particular regard, because there's a lot of anger, and there have been recommendations by the Parliamentary Panel Standing Committee, the High-Level Committee in the past as well into this regard. The NEET examination seems to be the priority, but there are larger questions of reform that the ministry will have to look into.
0: Right, Amit, we are standing by for that news conference to begin. We are also learning of how Dharmendra Pradhan is seated and will be beginning that news conference shortly. Lots of questions that will obviously come his way given what has happened in the last few days, but also the fact that the government has not gone into this matter in depth. 25 lakh students, their future at stake, and if the system is not made robust, then this is going to massively raise questions against the central government of how this issue has not been taken seriously. All right, not too sure if Amit is still connected with us, but any moment now, that news conference that is set to begin, Dharmendra Pradhan will be leading that news conference, and whether there will be answers, key revelations on how the paper leaked in the first place, who all are responsible. Remember, the CBI is now probing the case, but it is an interstate connection that has been established, and multiple state police that have been coordinating with each other to really draw the link of how the paper, the guest paper, quote-unquote, as is being termed, changed hands. 140 questions that saw an exact match, and it was out there on social media. The NTA cancelled the paper. 3rd of May is when the paper was held, and now the re-exam that will be held on the 21st of June. Now, this certainly is an announcement that will be made by the Union Education Minister, but how really will he answer on why this has been recurring? You would remember in 2024, when there were allegations of paper leak, Union Education Minister Dharmendra Pradhan, who had said that there was no evidence of paper leak and that the allegations of corruption in the NTA were unfounded. He had also gone on to say that isolated incidents should not affect the future of aspirants, but not a line that the government can afford to take anymore, given how badly it has gone this time around with the paper leak. In fact, news just trickling in on this front. NEET paper leak probe that has revealed alleged years of old exam racket. Mangilal, Dinesh, who are accused of leaking and reselling NEET papers earlier too. Let's cut across to Union Education Minister Dharmendra Pradhan in this press briefing.
2: अभी एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। मित्रों, मैं दो तीन विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूं। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। 3 मई को एग्जामिनेशन हुई, 7 मई तक एनटीए को, एनटीए की ग्रीवेंस रिजिस्ट्रेशन सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई, गेस पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन शीट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई, एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया। भारत सरकार एजेंसी संबंधित दो तीन राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था प्रथम दृष्टिया में, राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से 7 रात को शुरू हुई, 8 को ही शुरू हुई, 8, 9, 10, 11 तीन चार दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कन्फर्म हुए हैं कि इस बार गेस पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है, हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में, हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए, इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधा कृष्णन कमेटी गठन हुई थी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधा कृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया, उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। स्वाभाविक देश में और विशेष करके स्टूडेंट्स में उसको लेके दो प्रकार की मत आए, हम दोनों प्रकार की मतों को स्वीकार करते हैं, हम अपना दायित्व उसको मानते हैं, उसको कैसे समाधान की रास्ता निकाले। और आज हमने 15 हमने आज नई तिथि के साथ आ रहे हैं, लगभग आज से एक महीने से थोड़ा एक दो दिन के बाद नई परीक्षा होगी। हमारी अप्रोच वही रहेगा, हम जीरो टॉलरेंस टू माल प्रैक्टिसेस, ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है, विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है, फिर रीनीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है, सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है, राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे, सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे, जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से विषय रखना चाहता हूं, आने वाले एग्जामिनेशन पे उसे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको उनको दंड भुगतना पड़ेगा। और मैं समाज को अपील करना चाहता हूं, विशेष करके सभी विद्यार्थियों का, कोई निर्भय होकर परीक्षा में, आप ही सरकार आप ही के साथ है, आप ही के हितों में, मेरिटियस स्टूडेंट्स की, मेधावी छात्रों की पक्ष में निर्णय लिया गया है। मैं फिर कहूं, हम नहीं चाहते थे कोई माफिया की षड्यंत्र से कोई मनी बैग आपकी सीट को छीन ले, हम नहीं होना देना चाहते थे। इसीलिए हमने एक कठोर, हमको बहुत एक अभिभावक के नाते, एक दायित्व में रहने वाले अधिकारियों के नाते और हमें मंत्री के नाते, हम सब उसमें से बहुत, जो घटना हो रही है उसमें से बहुत दुखी और चिंतित हैं, लेकिन हमें बड़े लक्ष्य को लेकर देश के हितों में हमें कठोर निर्णय लेना पड़ा है। हमको छात्रों को भरोसा सर्वोपरि है। मैं फिर दो तीन जो सुधार अभी अभी इस बीच में एनटीए की पास और मिनिस्ट्री के पास और मेरे जैसे व्यवस्था तक अनेक सुझाव आए हैं, अनेक सुधार की सुझाव हैं। और सुधार मैं मानता हूँ कि कंटिन्यूअस विषय है, सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है। सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और बाहर भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी। इसलिए हम ओपन माइंड पे इस परीक्षा को भी जा रहे हैं। मैंने जैसे दो तीन पहला ही नोटिफिकेशन जिस दिन परीक्षा कैंसिल हुई, परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए विस्तार से एनटीए एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल, शाम तक आपको एक फिर एनटीए की पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर से छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा। और एक विषय आई थी कि परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा। पिछले बार भी जो परीक्षा हुई अनेक राज्यों ने अपने राज्य के विद्यार्थियों को परिवहन की व्यवस्था किया था, अनेक राज्यों ने किया था, अनेक राज्य नहीं किए थे, अनेक राज्य किए थे। हम भारत सरकार की ओर से हम बात करेंगे और मैं भी खुद बात करूंगा माननीय मुख्यमंत्रियों से, इस बार नीट की परीक्षा के समय में विद्यार्थियों को आवागमन में और कितना कम बोझिला करना पड़े उसकी दायित्व हम लेंगे। और उस समय में जून में बहुत देश की बहुत सारे राज्यों में थोड़ा मौसम का भी परिवर्तन हो चुका होगा, बारिश भी आ चुका होगा, इसको भी एनटीए फैक्टर इन कर रहा है अपने योजना में। इसको कैसे हम लोग क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था किया जाए, मैंने परीक्षा तो होगा लेकिन मौसम खराब रहने से क्या करना है उसका भी हम पहले से इन एडवांस प्लानिंग हम कर रहे हैं। मित्रों, मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूँ, विशेष करके विद्यार्थियों को मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ, कोई भी अफवाह में ना जाए, कोई भी आखिर सामाजिक चुनौती है। राधा कृष्ण कमिटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं, इसकी सुधारने की जिम्मेवारी हम लेते हैं, बिल्कुल सुधारने का हम जिम्मेवारी लेते हैं। और मैं समाज की सभी वर्गों को अपील करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि हम आस पड़ोस में जो माफिया घूमते हैं हमें पता नहीं है, एक सामाजिक व्याधि है, एक सामाजिक व्याधि में सभी से सोशल इविल, सोशल इविल है, इस व्याधि से हमको समाज को मुक्त करना पड़ेगा। हमें मालूम है कि हमारे आस पड़ोस में क्या क्या हलचल हो रही है, आपको भी मालूम है, आपको कई सारे विषय तो मीडिया से पता चलता है, सही पता चलता है। मैं आप सभी के सहयोग चाहता हूँ, देशवासियों का सहयोग चाहता हूँ, नीति निर्धारकों का सहयोग चाहता हूँ, राज्य सरकारों का सहयोग चाहता हूँ, देश की बच्चों के भविष्य के लिए हमें एक निर्भुल परीक्षा, परिष्कार परीक्षा, स्वच्छ परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, मेरे ओर से इतना उल्लेख करना था।
3: सर जो पैसे
2: एक सबका मैं लूंगा, एक एक करके इनसे अंचल, थोड़ा आप इधर अंचल इधर आ जाओ, आप ही अंचल जिसको कहेंगे हम उसको लेंगे।
4: सर क्या चूक कभी पता चली है, गड़बड़ी कहाँ पर थी, क्योंकि गड़बड़ी पता होगी तभी तो आप उसको ठीक।
2: सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा, पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार बीजेपी, ये मैंने कहा ना, इसकी राधा कृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी।
3: एक प्रश्न ऐसा है कि विपक्ष ने इसमें राजनीतिक आरोप किए हैं कि भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने ये पेपर से धांधली की है,
2: मैं उसके उत्तर विनम्रता से नहीं देना चाहता हूँ, ये विषय राजनीतिक है ही नहीं, मैंने कहा एक सामाजिक व्याधि है, इस सामाजिक व्याधि से समाज को मुक्त रखना पड़ेगा, सभी की दायित्व है, मेरा भी दायित्व है, सभी राजनीतिक पार्टियों की दायित्व है।
5: एक सवाल भी रहा है सर, क्योंकि 2024 में भी इसी तरीके की खबरें आई थी, क्या एनटीए के मैकेनिज्म में सुधार की गुंजाइश है, सुधारने की जरूरत है अभी?
2: हाँ, निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया,

0: में और सुधार की आवश्यकता है, इसको सुधार किया ही जाएगा।
1: सर, सीबीआई के रिमांड नोट में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि एनटीए से जुड़े हुए लोगों के लिंक्स को भी प्रूव किया जाएगा इस बार। पिछली बार ये कहा गया था कि जो मतलब ग्राउंड लेवल का जो छोटा स्ट्रक्चर था, सीबीआई ने जांच वहीं तक करके छोड़ दी थी। इस बार क्या आपका रिएक्शन है जो रिमांड नोट में सीबीआई ने बात कही है उस परिप्रेक्ष्य?
0: सीबीआई ने सही कहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, वो एनटीए के अंदर हो, बाहर हो, कोई भी हो, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा।
2: सर, मेरा सवाल है कि जब ऑनलाइन अगर परीक्षा होती तो आपको लगता है कि इसमें एरर नहीं होगा, ये एकदम आप
0: तुलनात्मक ओएमआर से सीबीटी थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं, वो भी वहाँ भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा और तुलना ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज है।
3: चार बार अभी तक देखा गया कि पेपर लीक हुआ है, हर बार आपने ये बात कही है कि जीरो टॉलरेंस रखा जाएगा, लेकिन बार बार ये चुप हो जाती है, आखिर में कहाँ थी?
0: नहीं, हर एक बार की नेचर बदल जाती है ना। देखो, ये हम सब एक सिस्टम चलाते हैं, सरकार बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं हम चीजों को सुधारेंगे, फिर भी एक्सीडेंट होता है, उसको ठीक करना पड़ेगा।
4: सर, एनटीए के स्ट्रक्चर में किस तरह का रिफॉर्म आप सजेस्ट कर रहे हैं? और जैसे परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है एनटीए में, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस एम्प्लॉइज है, उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं कि उससे लीक का चांसेस बढ़ जाते हैं?
0: मैंने कहा कि पहले सीबीआई को अपने काम को पूरा करने दो, इसके अलावा बैंकों ने एनटीए को और मजबूत किया जाएगा।
5: सर, जिस तरीके से आपका एनटीए को मजबूत किया जाएगा, लेकिन साल दर साल पेपर लीक होता है, तो क्या एनटीए जिम्मेदारी लेगा किस तरीके से गलती ना हो?
0: तो एनटीए ने दायित्व लिया है, ये सूचना एनटीए को ही आया है, 7 को एनटीए की ग्रीवेंस पोर्टल में आया है, एनटीए ने उसको छुपाया नहीं, एनटीए ने उसको संवेदनशीलता के साथ सरकार के सामने रखी, हमने हमारे नेतृत्व के सामने रखा, बाकी सिस्टम के सामने रखा, एजेंसियां तुरंत काम पे 8 तारीख सुबह से 7 तारीख रात को एजेंसियां काम शुरू कर दी है, 12 को हमने निर्णय कर लिया कैंसिल करने का, 15 को हमने निर्णय कर लिया परीक्षा करने का, सब एनटीए ने ही किया, एनटीए अकाउंटेबल है, एनटीए में जो कमियां उसको सुधारना पड़ेगा, जो भी गुनहगार है उसको परिधि में लाना पड़ेगा और एनटीए ही अकाउंटेबल होगा।
6: पेपर लीक के आरोपियों ने कहा है कि पिछले साल भी पेपर आउट था।
0: मैं कम से कम अफवाह में हम ना जाए, कोई विषय में हम अफवाह में ना जाए, हम सब जिम्मेवार, आप सब राष्ट्रीय मीडिया हो, आप सबकी दायित्व है, समाज में जो है हम कुछ भी चीज हम छुपा नहीं रहे, कुछ भी चीज हम मुंह फेर नहीं रहे, लेकिन जो विषय है ना, असम्पशन 20-25 लाख बच्चों की भविष्य की सवाल है, आपकी एक एक वाणी अनेकों के मन में उद्वेग खड़ा करता है, जो तथ्य है वो छुपना नहीं चाहिए, आपकी सहयोग में आपके सहयोग से हम यहाँ आए हैं, ये मीडिया ने यहाँ तक इसको लाया है, हम उसको आदर करते हैं, लेकिन हम ऐसा भी कुछ विषय ना करें जो अनावश्यक फिर एक बार तनाव खड़ा करे, प्रमाण है तो उसको चिंता करें। जो जो जो मेरे में कोऑपरेशन चाहूंगा, जो मित्र पूछ चुके हैं वो छोड़ दीजिए, जो नहीं पूछे वो पूछे। सुधारा जाएगा, नहीं कई चीज ध्यान में आया है, कई चीज आ रहा है, आई अश्योर यू विल गो टू द लास्ट पॉइंट।
7: जैसे माफिया हैं, सब जानते हैं कि हर अलग अलग राज्य में सुनते हैं हम कि माफिया वहां पर मौजूद हैं, वो कैसे समझ में बिठाया जाएगा? क्योंकि वो थर्ड पार्टी वाला भी सवाल उठा कि एनटीए का ग्राउंड कहीं ना कहीं शायद क्या कमजोर हो रहा है, किस तरह से राज्यों को साथ में लाया जाएगा?
0: देखो, राज्य इस बार भी मैं आभार पकड़ के, इस बार जो हमने कहा ना, मैंने राधाकृष्ण कमेटी को कोट किया, राधाकृष्ण कमेटी ने कुछ मौलिक सुझाव दिया था कैसे इसको इलेक्शन मैंने कैसे कंडक्ट किया जाए, उन्होंने शब्द लगाया था इलेक्शन टाइप के अरेंजमेंट करो, जनरल इलेक्शन जैसे होती है ऐसे इस बार अरेंजमेंट करो, आप राज्य देश की किसी भी जिला कलेक्टर एसपी को आप इस बार पूछिए फोन करके, उन्होंने क्या किया, मैंने कम से कम उस दिन 3 तारीख को कम से कम 15 देश की सभी कोनों में, जम्मू का श्रीनगर से लेके केरला तक, नॉर्थ ईस्ट से लेके सेंट्रल इंडिया तक, मैं अनेक कलेक्टर एसपी को हिमाचल से भी रैंडम फोन किया है, उसी समय में कहाँ हो, सब एग्जामिनेशन सेंटर में थे, सब एग्जामिनेशन सेंटर, सब एसपी कलेक्टर सब एग्जामिनेशन

0: सेंटर में थे, अलग कोई गेट के सामने है, कोई कैंपस के अंदर है। राज्य सरकारों ने सभी जगह पे बहुत ही मदद किया, फिर उनके हम मदद लेंगे। राज्य सरकारों ने की मदद के कारण ये हो पाई है। 5400 सेंटर में इस बार तो ये निगरानी की व्यवस्था की गई थी, हर एक विद्यार्थियों को हम AI टूल यूज करके उनको आप भी देख पा रहे थे, आप लोग उस दिन जो कोई गए होंगे मॉनिटरिंग सेंटर में आप भी देख पा रहे थे, लेकिन फिर भी चूक हुई है। आप कुछ बच्चे
1: सवाल है कि जो 21 तारीख को परीक्षा होगी उसमें इस तरीके की धांधली लीक नहीं होगी, इसकी क्या कोई
0: आपकी मदद चाहिए, हम मिलकर आश्वर करें कि नहीं होगी।
2: सर राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि सरकार पर जो छात्र हैं और जो अभिभावक हैं उनका भरोसा टूट गया है, उस भरोसों को कैसे लाया जाएगा, कैसे विश्वास दिलाया जाएगा कि आगे से ऐसी चीजें ना हो।
0: ठीक है, मैं फिर विनम्रता को मैं उसके कोई राजनीतिक आरोप का उत्तर आज नहीं दूंगा, ये मंच नहीं है। मेरे दायित्व मेरे 22-25 लाख बच्चों की भविष्य, उनके अभिभावक, उनके मन की आवेग और संवेदना, मैं भी आपको थोड़ा विनिवेदन करता हूँ। अभी आज के दिन बच्चों को हम एक फिर एक पुनः व्यवस्था कर रहे हैं, बच्चों को कोई भी हम कन्फ्यूजन में ना रखे, मैं कोई राजनीतिक उत्तर नहीं दूंगा। आपका पूछ चुके
3: आप पूछ चुके कमेटी से रिलेटेड एक सवाल ये है कि उन्होंने हाइब्रिड मॉडल सजेस्ट किया था जिसमें आप ईमेल कर दो सेंटर पे प्रिंट आउट हो जाए, बट वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया और क्या क्या मल्टी मॉडल शिफ्ट मॉडल रिकमेंड हुए थे वो कब इंप्लीमेंट होंगे या वो हो चुके?
0: मैंने फिर कहूँ राधाकृष्णन कमेटी की लगभग सारे रिकमेंडेशन हमने पालन किया है। जो 5400 सेंटर की इस बार की परीक्षा के अरेंजमेंट देखिए, इसको आज कोई एक अखबार ने शायद इंडियन एक्सप्रेस ने उसकी पूरा चेन को समझाया है, क्वेश्चन सेटिंग से लेके प्रिंटिंग ट्रांसपोर्टेशन बैंकों में स्टोर रहना, परीक्षा सेंटर पे जाना, परीक्षा सेंटर से फिर पोस्ट के माध्यम से NTA को लौटना, ये पूरा कमांड चेन है। राधाकृष्णन कमेटी ने जो रिकमेंड किया उसमें से लगभग हमारी दृष्टि में 100% पालन किए हैं। उसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों विषय कहा था, जिसे मैंने भी कहा, मैंने पूरा सो मोटो भी कहा कि हमने अगले बार से CBT में काम करेंगे, ये भी राधा कृष्ण कमेटी की रिपोर्ट था, हमने लागू नहीं कर पाया था, करेंगे अगले बार।
4: सर आपने एग्जाम से पहले 80 टेलीग्राम चैनल को ब्लॉक किया था, लेकिन ये जो अभी जो जांच निकली है उसमें ये पता लगा है कि टेलीग्राम व्हाट्सएप पे हर जगह पे यूट्यूब पे ये चल रहा था, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपकी डार्कनेट की टीम क्या कर रही थी, जो कि होम मिनिस्ट्री की टीम का यही काम था कि परीक्षा में ये सब चीजें की नजर रखे, तो क्या ये बड़ी चूक नहीं है?
0: देखिये मैंने आपके आप आए नहीं थे, मैंने एक विषय कहा कि साइबर चैलेंज बढ़ रहा है, 120 आपके पास 80 नहीं 120 टेलीग्राम चैनल काम कर रहे थे, हमने सबको निरस्त किया था, ये व्हाट्सएप में भी आया, हमें नई समय की चुनौतियों को आगे जाना पड़ेगा। साइबर क्राइम हमारी एक चुनौती बन चुकी है, हम उसको फिर पूरी कोशिश करेंगे, इसमें से उसको रिंग फेंसिंग करेंगे।
5: सर NTA से ही पेपर लीक हो गया ऐसी कुछ खबरें चल रही
0: है, CBI को करने दो, मैं उसको CBI हमारे बहुत विश्वसनीय एजेंसी उसमें वो लगा है, निश्चित रूप में उसको तह तक जाएगा।
6: कुछ छात्रों ने सुसाइड जैसे कदम उठाए, उनको कुछ मदद किया, क्या आप राय दें?
0: देखिए मैं इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, एक अभिभावक के नाते एक नागरिक के नाते इस बच्चे की दुर्मूल्य और अमूल्य जिंदगी के लिए जो नुकसान हुई है मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। हम सबकी दायित्व बनती है, मेरे भी दायित्व बनती है, ये विषय कैसे पुनरावृत्ति न हो इसकी चिंता करें।
7: 21 जून को जो नई रिएग्जामिनेशन डेट अनाउंस की गई है उस दिन योगा डे भी है,
0: वो सुबह होगी, योगा डे सुबह होगी, हमें सोच के तय किया है।
5: सर ऐसा देखा जा रहा है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो छात्रों पर ही लागू होता है, मंगलसूत्र उतरवा दिया जाता है, कई जेब वाली पैंट उतरवा दी जाती है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक हो जाता है, तो ये जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो सिस्टम पे लागू होना चाहिए छात्रों से ज्यादा, क्योंकि हर बार परीक्षा केंद्र पर विवाद आता है कि मंगलसूत्र उतरवा दिया गया है, अंगूठी उतरवा दी गई है, लेकिन पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो रहा है।
0: देखिए हमने इस दो अलग अलग विषय है, छात्र कैसे सहज बिना तनाव के परीक्षा दे, मैंने कहा कि इसकी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की विषय है, जो छात्रों की सिक्योरिटी के दृष्टि से जो मिनिमम करना चाहिए वो करना पड़ेगा शायद, लेकिन वो हरास ना हो उसकी चिंता करना पड़ेगा। बाकी रहा इसकी जो कमांड चेन को तोड़ने वाले को कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसकी दायित्व तो हमने लिया है, उसको स्वीकार किया है, CBI काम पे लगी, थोड़ा उसको पूरा करने दीजिए।
8: लोगों ने एक एक महीने पहले तक लोगों NTA को ईमेल्स लिखे हैं एंड वी हैव प्रूफ्स, देयर आर मल्टीपल पीपल, अगर नॉर्मल लोगों को ये पता चल चुका है कि पेपर लीक हो सकता है, दे हैव रिटन दीस ईमेल्स टू एनटीए, तो एनटीए के लिए हाउ डिफिकल्ट वाज इट?
0: नहीं नहीं, एनटीए के पास जब ही खबर है एनटीए ने कार्रवाई किया
8: सर, एक महीने पहले भी लोगों ने।
0: अभी देखो इसका मैं कोई तथ्य के ऊपर आज काम बात करना पड़ेगा, जब तक मेरे कान में तो अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ। 7 को NTA को खबर आया, हम 7 रात को हम तीनों के बीच में बातचीत हुई, हमने काम किया है, तथ्य के साथ बात करेंगे।
9: सर, देयर आर स्ट्रक्चरल इश्यूज विद इन NTA व्हिच वाज रेड फ्लैग बाय द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी इन दिसंबर 2025 इटसेल्फ, 6 months लेटर वी आर स्टैंडिंग इन द सेम सिचुएशन। NTA के 14 में से 5 पेपर्स में इरेगुलरिटीज या गड़बड़ियों की बात पार्लियामेंट कमेटी ने खुद कहा था।
0: देखिए, मैं पार्लियामेंट्री कमेटी के मत पे नहीं जाऊंगा, मैं राधा कृष्ण कमेटी के मत पे जाऊंगा, आपकी मत पे जाऊंगा, फैक्ट पे जाऊंगा, असम्पशन पे नहीं बात करेंगे, पॉलिटिकल टोन पे कम से कम आज तो मैं करूंगा, सारे का उत्तर मैं पार्लियामेंट भी दूंगा, भी सब एक्शन टेकन रिपोर्ट भी हमने दिया है। हमने और पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की विशेष करके जब प्रतिपक्ष के व्यक्ति बैठ जाते हैं कैसे लिखते हैं, फिर आप मेरे से आप भी ज्यादा जानते हो, मैं आज कोई पॉलिटिकल उत्तर, आज वो माहौल नहीं है, मैं उसको नहीं देना चाहूंगा।
10: बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उनका ये डिमांड है कि एनटीए को बदला जाए, एनटीए के जगह किसी और एजेंसी को जो है वो लाया जाए, क्योंकि बार बार एनटीए जो है वो मिसकंडक्ट कर देती है।
0: देखो, कोई ना कोई एजेंसी, मैंने कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब की एक इंटरव्यू देख रहा था, कोई ना कोई एजेंसी तो करेगा ना, देश में अनेक जगह पे स्टेटों में भी ब्रीच हो रहा है, कोई एजेंसी वहां भी काम कर रहा है। पिछले दिनों में भारत सरकार ने एक पब्लिक एग्जामिनेशन की कंडक्ट एक्ट लाया, व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी, व्हीकल नहीं, व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी। एनटीए कोई सरकार के निर्णय नहीं था, कुछ विसंगति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक सेंट्रलाइज एजेंसी बनो, उसमें से बनी है। एनटीए ने हर एक साल 1-1 करोड़ का काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, फिर भी गड़बड़ी हो रही है, उसके दायित्व हम लेते हैं। व्हीकल का इशू नहीं है, इशू है प्रोसेस की, चैलेंज की। सोसाइटी मैंने कहा ना, ये जो अभी मैंने आज होम सेक्रेटरी सामान्य गृहमंत्री जी ने होम सेक्रेटरी साहब को निर्देश दिया है कि हर एक जिले में इस सर्विलांस व्यवस्था को, हमको पता है कौन सी जिले में कौन सी दलाल घूम रहे हैं, ये सामाजिक व्याधि है, लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके व्यवस्था को तोड़ने की, ये कोई व्हीकल की इशू नहीं है, ये व्यवस्था की, ये कोई एक व्याधि है, आपकी मदद में चाहता हूँ उस व्याधि को रोकने के लिए।
11: सर, एनटीए कह रहा था कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए 22 लाख बच्चों की परीक्षा के लिए वो कैपेबल अभी नहीं है, आपको लगता है नेक्स्ट टर्म तक हो जाएंगे?
0: चलो, अभी तो मैंने कहा बाबू, साल भर
12: का एक सवाल ये है कि क्या सर, एक सवाल ये चाहिए, क्या नीट 2025 भी संदेह के घेरे में था कि
0: नहीं नहीं नहीं
12: सर, इसलिए सवाल ये पूछा मैंने।
0: देखो, मैं असम्पशन पे कोई उत्तर नहीं दूंगा, एजेंसियां काम करनी है उनको करने दो।
13: सर, एक सवाल, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला है और लाखों बच्चों के भविष्य से, क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था और भी सख्त करने की जरूरत है, जैसे कि जो भी अपराधी हों इसमें संलिप्त हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो सरकार के अंदर हो, सिस्टम के अंदर हो या बाहर के लोग,
0: कोई भी हो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो सामाजिक व्याधि एक भयंकर कैंसरस रूप ले लिया।
14: सर, अब कंप्यूटर भी हो गई है तो क्या
0: हुआ नहीं हुआ हुआ नहीं
14: मतलब अगले साल से होगी तो क्या यही देख सकते हैं कि शायद ऑफलाइन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी ग्राउंड पे या किस तरीके से? क्योंकि
0: देखिए, सारे विषय को मैंने आज के परिप्रेक्ष्य में आपकी मदद मांगा, आप उसमें मदद करिए, धन्यवाद।
15: And that's the word coming in from Union Education Minister Dharmendra Pradhan, while reassuring students and also putting out details of how the re-exam will be held on the 21st of June. And the government will make every possible effort to ensure that it is an easier process for the students. But no answers really coming in on why the paper leak happened in the first place or what the CBI probe has revealed so far. So while he continues to reassure students and of course put out details of the re-exam, also saying that the NTA took responsibility as soon as they were notified of the paper leak, and that is when they took the decision of nullifying the paper that had happened on the 3rd of May. 21st of June is when the re-exam will be held, and as he encourages students to also know that it is only fair, because the paper leak had happened, that all the students, 23 to 25 lakh students, who get another chance to know that the paper on the 21st of June will be carried out transparently in a free and fair process. But no answers on why the paper leak happened, what had happened in 2024. You would remember when he had dismissed those allegations and also said that there was no evidence to really hold the NTA responsible, and the allegations of corruption in the NTA were unfounded. So that was the position in 2024 and 2026, where the paper leak has happened. Remember, more than 140 questions that were an exact match of the question paper that the students answered to on the 3rd of May. And that is when the NTA went ahead to cancel that paper, to call it nullified. And 21st of June is when the re-exam is happening. Now, Union Education Minister Dharmendra Pradhan also saying that they have been trying to build a robust process when it comes to giving the NEET exam, understanding the full responsibility of the fact that 25 lakh students have their future at stake because of this exam, and they had included every possible recommendation of the Radhakrishnan Committee. However, they're saying that they are also working on this process. Most importantly, Dharmendra Pradhan saying that cyber challenge certainly is on the rise. And when it came to the inclusion of apps and how many of the culprits who went on to actually adhere to passing on the quote-unquote guest paper and how they did that, but like I said, not too many answers coming in at this point, as we continue to await what the CBI probe will reveal. As he also assured students that the paper that will be held on the 21st of June, which is the re-exam, will be absolutely through a fair process. And students must remain rest assured that the paper they will be giving on the 21st of June may not see any sort of a mishap of this nature. But that's the word coming in from the Union Education Minister. Several questions were asked to him on how the paper leaked, why the paper leaked, who exactly is responsible. And he continued to say that we must wait for the CBI probe and the answers that will come out of that probe, while assuring that the motive of the government, the intent of the government, remains to ensure that a robust process really is built around the NEET exam, to ensure that every student does not really suffer on this front. But at the moment, it certainly remains that the students, 23 to 25 lakh students across the country, who will have to go through the re-exam process on the 21st of June, that is when they'll have to prepare themselves to give the paper all over again. We've seen widespread protests that have happened to this effect, where students across the country have expressed anger over why the paper leak happened and how they will have to go through the entire process all over again. As Union Education Minister Dharmendra Pradhan also reassured that the government at its end will make every possible effort to ensure that there is minimal trouble that the students have to go through while appearing for the re-exam. On that note, we have to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.
16: You are watching India Today.

तो मेरा जेंजी से सीधा सीधा, देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है कि ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है? ऐसे ही हर साल आप देखो, 2017 में पेपर लीक हुए, उसके चार साल बाद 2021 में हुए, उसके तीन साल बाद 2024 में हुए, उसके दो साल बाद 2026 में हुए, अब उसके एक साल बाद 2027 में होंगे, और हर साल पेपर लीक होंगे अगर आपने कुछ नहीं किया तो। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेंजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता, भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेंजी पे पूरा भरोसा है। ये देश आपका है, इस देश के नेताओं को इस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
3: सोच बदलो और बैंक भी.
4: करेक्ट, द टेस्ट ऑफ सक्सेस.
5: लाइक आई सेड बिफोर, वी बेटर ओन दिस सिंस.
6: The action never stops, and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first, welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.

0: act of desperation by a farmer in Maharashtra. Bhagwan Sable set 600 sacks of onions on fire after traders quoted a price of 1 rupee per kilo. The farmer from Tintaraj village in Dharashiv district had spent over 80,000 rupees per acre for cultivation. Earlier, he had sold 70 sacks of onions for just 4,000 rupees.
1: मैंने वो एक गाड़ी मार्केट में प्याज की लेके गया तो सिर्फ मुझे एक रुपए का भाव मिला जब एक रुपए का ही भाव मिल रहा है तो प्याज रख के मैं क्या करूं इसलिए मैंने वो 600 बोरी को आग लगा दी.
0: There is widespread resentment among farmers in Marathwada. Farmers in the region have faced a double blow this time, falling prices and unseasonal rains. They are struggling to recover even their production costs.
2: अभी मंडी में फिलहाल वक्त आपकी लागत तो थोड़ी इतना भाव है
3: नहीं कुछ भाव नहीं उसको 1400 रुपए क्विंटल चालू है.
2: कितना रुपए क्विंटल जाना चाहिए?
3: कम से कम 2000 रुपए क्विंटल जाना चाहिए.
2: सरकार से कुछ कहना चाहिए?
3: हमें भाव चाहिए कम से कम 2000 रुपए क्विंटल.
4: भाव चालू है 100% तो 500 लोग खर्च ये आम्हाले 70,000 रुपये ते भी बाहर सगळं उधार है दुकानदार बी भरण फवारण्या सगळं बाहर.
0: Most farmers are facing a debt problem. They are now hoping for relief from the government. Bureau Report, India Today.

0: मिलकर के आगे बढ़ते रहे। एक बार फिर आपके अकेला भरे स्वागत और गहरी मित्रता के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार।
1: Prime Minister Narendra Modi in that joint statement, as he also reiterated and rather condemned of how UAE was targeted during the West Asia war. Prime Minister once again talking about stronger ties between India and UAE. Remember, important discussions that are to figure as part of these talks to happen between India and UAE, where it will primarily focus on oil and gas supplies, strategic petroleum reserves, maritime security and regional stability. Prime Minister Narendra Modi once again urging for peace. And Prime Minister, in this very important visit on day one in the UAE, as he's there to discuss strengthening coordination with the UAE, especially given the rising oil prices and disruptions in the Strait of Hormuz. Prime Minister made that big remark on the West Asia war, where he condemned how UAE was targeted and was subject as collateral damage during the West Asia war between Iran, US and Israel. How UAE had to bear the brunt of it is something that India has condemned very, very strongly. Prime Minister Narendra Modi making that big remark on the West Asia war in UAE, where he's gone on to condemn how the UAE was targeted as a result of it and had to bear the brunt despite not being a stakeholder. UAE came in the middle of the West Asia war and had to face collateral damage, as Prime Minister Narendra Modi once again urging for peace. Let's listen into that statement.
0: Brother, in kathin paristhitiyon mein aapne jis sanyam, courage aur vindam ka parichay dikhaya hai, yeh bahut hi sarahaniya hai. Rashtriya ekta, suraksha और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। कठिन समय यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करते हैं और उनकी देखभाल की जाती है। जिस प्रकार से आपने उनको अपने परिवार के सदस्यों पर संभाला है, मैं यूएई सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ब्रदर, पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपस से सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएई की स्ट्रैटेजिक साझेदारी

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: Character, the taste of success.
4: Like I said before, we better hold this in.
5: But this is the first time I'm meeting Saif the Tiger enthusiast.
6: Of course.
5: Truly iconic big cats.
6: Lions. We have Paro.
5: Not Devdas's Paro, I assume.
6: The valor of the Maharajas and the might of the tigers is going to be wild.

तो मेरा जेंजी से सीधा सीधा, देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है कि ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है। ऐसे ही हर साल आप देखो, 2017 में पेपर लीक हुए, उसके चार साल बाद 2021 में हुए, उसके तीन साल बाद 2024 में हुए, उसके दो साल बाद 2026 में हुए, अब उसके एक साल बाद 2027 में होंगे, और हर साल पेपर लीक होंगे अगर आपने कुछ नहीं किया तो। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेंजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता, भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेंजी पे पूरा भरोसा है। ये देश आपका है, इस देश के नेताओं को इस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है।

0: The effects of the war in the Middle East is somewhere or the other reaching the country right now. The petrol and diesel prices have been increased by more than ₹3. And if I could show you the fresh rates over here in Delhi NCR region, petrol rates that were supposed to be at ₹94 have been increased to ₹97, whereas the diesel rates that were supposed to be at ₹88 have been increased to ₹91, which means that there is a clear spike of ₹3 that has happened. We'll try and speak to a few people as well. Bhaiya, petrol diesel ke daam aaj se badh gaye hain. कितना असर पड़ेगा आपके डेली बजट पर और क्या क्या कहना चाहेंगे इस राइस पे जो हुआ है पेट्रोल का?
1: प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की थी कि अपना तेल बचाओ, तो उसके तहत हम लोग तो आजकल कहां जहीं जहां भी जा रहे हैं तो हम कार पुल कर रहे हैं। और देखो, संकट तो है ही पूरे विश्व के ऊपर, क्योंकि युद्ध चल रहा है और जो खाड़ी देशों से हमारे पास तेल आता है तो उसमें दिक्कत आई है, तो पूरे देशवासियों को पता है।
0: प्राइस की तरह नहीं आया, ये आप झेलने के लिए तैयार थे? आपको पता था कहीं ना कहीं कि ऐसा असर पड़ सकता है जेबों पर?
1: बहुत दिन से चल रहा था, पहले से ही मतलब मोदी जी अपील कर रहे हैं, पूरे देश में सब मीडिया के माध्यम से सूचना मिल रही थी कि तेल के पैसे बढ़ने वाले, वो तो पहले से ही पता था कि पैसे बढ़ेंगे, तो ये एक सरप्राइज नहीं था, इसके लिए हम पहले से ही तैयार थे। और जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था अमेरिका से, उसी दिन से हम तैयार थे कि इस युद्ध का सबसे ज्यादा असर ईंधन पे पड़ेगा, चाहे वो गैस हो चाहे वो तेल हो।
0: So as you heard that somewhere or the other, people were already prepared that the rates of petrol and diesel are going to increase in the coming few days. The increase is ₹3 at this point in time. ₹2 were increased on the milk products yesterday by Amul and Mother Dairy and other milk agencies. So definitely the inflation is somewhere or the other reaching over here. The war that started in the Middle East is somewhere finding its way out here in India and in the deep pockets of the citizens of the country.
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक, टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। 2004 से 14 के दशक में 4,75,000 करोड़ रुपए किसानों को मिले थे। NDA 1, NDA 2, NDA 3 ये जो पीरियड है इसमें 19,00,000 करोड़ रुपए किसानों को खरीफ में मिले। किसानों के जीवन में इसके कारण एक बड़ा परिवर्तन आया है।

0: तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है. We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए. Oh,
1: Meanwhile, reports also suggested that although Dhurandhar was banned in Pakistan, pirated versions of the film circulated widely online and were watched by many viewers across the country.
0: जो वादा किया गया, उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना. रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है.
1: Interestingly, Aditya Dhar's Dhurandhar franchise follows Ranveer Singh as an Indian spy infiltrating the dangerous gangs of Yari and features an ensemble cast including Arjun Rampal, R. Madhavan, Sanjay Dutt, Sara Arjun, Danish Pandor and Rakesh Bedi in key roles.
2: Zarwari sir, aapne patke to badi safed pal rakhi hai apne farm house mein. Your buttocks are really white.
1: Entertainment Bureau, India Today.
3: More than a decade after redefining friendship, ambition and the pressure of expectations, Bollywood's cult classic Three Idiots is finally heading toward a sequel. In fact, reportedly, Aamir Khan has officially begun work on the sequel to the 2009 blockbuster. And it has been further revealed that the sequel will feature a major time leap. Dive into this report to know more.
4: लाइफ एक रेस, अगर तेज नहीं दौड़ोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएगा.
5: हम सब तो कॉलेज सिर्फ डिग्री पाने के लिए जाते थे. डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देगी.
1: More than a decade after redefining friendship, college life and crushing pressure of expectations, the classroom bells are finally ringing once again.
6: उतनी अलग सोच.
7: सर आप जानते हैं हम कौन है?
8: प्राइम मिनिस्टर का बेटे हो तो भी आई विल नॉट एक्सेप्ट योर पेपर.
7: सर आपको हमारा नाम और रोल नंबर पता है?
9: नहीं पता है.
1: बिकॉज़ बॉलीवुड्स कल्ट क्लासिक थ्री इडियट्स इज ऑफिशियली हेडिंग टुवर्ड्स अ सीक्वल एंड फैंस सिंपली कैन नॉट कीप काम.
10: अच्छा एक बात बता,
1: From All Is Well becoming a national mantra, to Rancho inspiring an entire generation to choose passion over pressure.
11: Baba ko scooter pe le aaya hai.
7: To kya speed po se bhejta?
1: Three Idiots wasn't just a blockbuster, it became an emotion deeply woven into pop culture. And now the legacy is preparing for its next chapter.
7: अपने बाप को देखा? Life is a race. If you don't run fast, you'll be like a broken anda. I'm the cuckoo bird.
1: Recently, Aamir Khan confirmed that filmmaker Rajkumar Hirani is developing Three Idiots 2, with the story set to revisit its beloved characters years later. And now, according to the reports, the actor has officially begun working on the sequel to the 2009 blockbuster.
12: कहाँ गया उसे ढूंढो.
7: ये जो अपना दिल है ना?
1: The reports further reveal that the sequel will also feature a major time leap, meaning the characters will no longer be at the same stage of life as seen in the 2009 film.
7: All is well. All is well.
13: और उसे problem solve हो जाएगी.
7: नहीं लेकिन उसको झेलने की हिम्मत आ जाती.
14: राजू तो समझा कर. वायरस हमारे साथ गेम खेल रहा है, डिवाइड एंड रूल.
1: इंटरेस्टिंगली अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, द बिगेस्ट ट्विस्ट सराउंडिंग द प्रोजेक्ट इज इट्स टाइमलाइन. व्हाइल अ टाइम जंप हैज बीन कंफर्म्ड, इट इज स्टिल अनक्लियर वेदर द स्टोरी विल अनफोल्ड बिफोर और आफ्टर द इवेंट्स ऑफ द ओरिजिनल फिल्म.
11: तू होगा चमचा इसका, मैं नहीं.
7: हे अब तो लाइन क्रॉस कर रहा है.
11: नहीं मैं बीच में लाइन बना रहा हूं क्योंकि मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है.
1: According to some reports, the movie will be called Four Idiots, with Vicky Kaushal playing the extra idiot. However, there is no confirmation that this is the case.
14: यार वैसे एक साल में कितनी साड़ियां रीजनेबल होती हैं?
1: The film became a cult favorite for its emotional storytelling, memorable college friendships, and strong message on the education system.
14: कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो. Success के पीछे मत भागो. Excellence का पीछा करो. Success झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी.
1: A massive blockbuster worldwide, Three Idiots crossed 400 crore globally and also witnessed tremendous success in China, where it surpassed the box office collections of Avatar. Making it one of Indian cinema's most celebrated films.
6: Oh, uncle!
1: And now, years later, the idiots are finally returning.
15: अरे सुन, 3 लाख वोट का लेके, हाँ?
16: हाँ, आप सोड़ा, आप पानी.
17: यार मरवाओगे यार तुम लोग.
15: और स्टार्टर्स में क्या?
1: यार जो भी. Entertainment Bureau. ये छोड़ दे. India Today.
15: और म्यूजिक चेंज कर यार, कुछ गजल गजल लगा, हाँ?
17: बोल रहा हूँ इसके साथ रहेंगे ना तो ये मरवाएगा.
18: यार तू तो वायरस का फुल केलपीटी कर दिया.
19: जाओ पना तुसी ग्रेट हो. तोहफा कबूल करो.
17: अबे आगे यहाँ से स्कूल नहीं है तेरा.
3: Tara Sutaria turned heads at the 79th edition of the Cannes Film Festival with a series of old Hollywood-inspired looks. From a monochrome Helsa gown to a dramatic Rhea Costa ensemble and an elegant Vivian Westwood appearance, the actor embraced timeless glamour with effortless sophistication on the French Riviera. Dive deeper into this report by my colleague Alice.

0: पर इतने बड़े फ्यूचर में मेरे लिए कोई जगह है भी या नहीं? तू रह लेगी मेरे बिना? पर मैं नहीं रह पाऊंगा यार, ऐसा फ्यूचर जिसमें तू ना हो नहीं चाहिए मुझे।
1: एंटरटेनमेंट ब्यूरो इंडिया टुडे।
2: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
3: Now, fans of Bridgerton finally have something exciting to look forward to, as season 5 has officially been confirmed and is arriving sooner than one expected. Promising fresh romance, emotional twists, and a brand new chapter in the Bridgerton universe, the upcoming season is already generating massive anticipation. Take a look at this report.
4: Michaela Sterling, I caution you. Every sordid detail John has spoken about me is a lie. The truth is power. And you must be?
5: The ton is rejoicing, and this time it's Francesca's turn.
6: I'm Francesca. Bridgerton. Kilmartin. Kilmartin is my name now.
5: Bridgerton season 5 is officially in production, with filming now underway in the UK on an 8-month schedule.
7: Big story at this hour, let's tell you, it's a big win we are hearing for the Hindu side in the Bodhshala temple matter. High Court has now declared Bodhshala a temple. The government of India and ASI will be taking a decision for the purpose of administration and management of the Bodhshala temple and the Sanskrit learning within property in question situated at Dhar. Listen in.
8: स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया।
9: मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उसमें?
8: नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे।
9: अल्टरनेट लैंड दी जाएगी?
8: नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ, कि अल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसीडर करे।
9: राम मंदिर में किया गया था उसी?
8: जी जी जी जी सर, कोर्ट ने ये कहा है। देखिए, जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ,
9: मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी?
8: उन्होंने कहा है दी जाएगी नहीं,
9: अगर
8: मांग की जाती है सरकार उसको कंसिडर करेगी, ये कहा है।
9: कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और
8: ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है। और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया।
10: बोले भारत माता की।
9: सर सर,
8: आराम से, आराम से,
10: आराम से यार।
8: देखिए, भोशाला के केस में आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का और ऐतिहासिक फैसला आया है माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है, साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ कर कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन, अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं और धार के अंदर उनको मस्जिद दी जाए, एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए, उस पर सरकार विचार करेगी।
7: High Court holding that original character Bodhshala was center of Sanskrit learning. The Muslim side can approach government for a separate land in Dhar district to continue with their prayers. The court has said, and I'm going to quote, "We've considered the material and the survey report. We have considered principles that archaeology is a science. Court can safely rely on conclusions derived on scientific studies by the ASI. We have, in fact, one of our reporters joining us. Srishti, I'm told, is with us for the very latest on the big story, a big win for the Hindu side. But important to be said that the Muslim side has other options left as well, including legal ones. Srishti, I think that's a correct assessment of the current situation.
11: Yes, as we know, the dispute over the Bodhshala complex has been one of the most long-running religious and archaeological disputes as far as India is concerned. But the core issue, as we know, is whether the disputed site is a temple which is dedicated to goddess Saraswati, or was it a Kamal Mola mosque. Now, the court, High Court today has very clearly said that the religious character of the disputed area is held to be Bhotshala with temple of goddess Saraswati. So it's definitely a big win for the Hindu side in this particular case. As far as the Muslim side is concerned, the court has said that they can approach the government for a separate land in Dhar district to continue their prayer. However, according to the High Court, in very clear words, the court has held that the original character, if we see the material before it and the reports before it, the original character of Bhotshala is one of a center of Sanskrit learning. The court has also spoken about the importance of archaeology as a science, stating that it has considered all the principles of archaeology as a science. It has also considered the material placed before it and also the survey report that was published by the Archaeological Survey of India. Based on the principles of archaeology, according to the High Court, the court can very safely rely on the conclusions which have been put forth, which have been derived based on scientific studies by the Archaeological Survey of India. The court has also pointed out that every government, it's true that every government has a constitutional obligation to protect the ancient monuments and structures, but it also has an obligation to protect monuments of historical importance and one of Sanctum Sanctorum. The court has said that that they have noted the continuity of Hindu worship or the worship by Hindus at the disputed site. But that particular worship by Hindus had never extinguished as far as that particular site is concerned. They have also recorded findings from historical literature where they said that if we talk about the character of the disputed area, it was one of Bhotshala, which was as a center of Sanskrit Sanskrit learning associated with Raja Bhoj of the Parmar dynasty. Making all these observations, the court has very clearly come to a conclusion that the original character of the disputed site was one of temple, was a site of Sanskrit learning. However, they have given liberty to the Muslim side to approach the government for a different land. Consider it as a protected area, protected monument. The Archaeological Survey of India would continue, even as per High Court's today's direction, to preserve the area. It would continue to administer and take care of the preservation and conservation of the Bhotshala site.
7: The other important point that has been made, and talk to us a little about it, it really stands out for me with the court saying that they can rely on conclusions derived on scientific studies by ASI. Also that the government, every government for that matter, has got the constitutional obligation to preserve structures. Preserve structures is what is the key word here, isn't it?
11: And definitely remember in 2024, the Archaeological Survey of India in this case had conducted a 98-day scientific survey of the Bhotshala complex under High Court's decisions and High Court directions itself. The ASI had also then later submitted a huge report running over 2,000 pages. Several submissions were made where the ASI at one point had also said that there's evidence that there was a temple, Parmar era temple architecture at the disputed site. Now, while considering that report in this case, the court has very clearly said that they have relied on the ASI report. They have also gone through the principles of archaeology as a science, and after going through those principles, the court can very safely say that they can rely on the conclusions that have been drawn by the ASI, considering these conclusions are based on scientific studies which were conducted by the Archaeological Survey of India itself. Talking about the obligation of the government, the court has said that yes, every government has a constitutional obligation to preserve those structures of archaeological importance, ancient monuments, historical importance, but also to preserve the Sanctum Sanctorum. So the court has, based on principles of archaeology, based on the survey report that was submitted by the ASI, which was eventually challenged by the Muslim side, they have, based on these reports and this data, come to this conclusion that the site is actually one of a temple of goddess Saraswati and not a mosque.
7: Well, absolutely. The bench has also said, importantly, viewers, that they have noted continuity of Hindu worship at the site, but it has never been extinguished. Also, I'm going to quote them again. We record findings that historical literature places establish the character of the dispute area. It was Bhotshala, a center of Sanskrit learning associated with Raja Bhoj of the Parmar dynasty. It says the government of India and ASI to take decision regarding management. It's not just about establishing the nature of this site, but also saying that what the government needs to do now is look at the management of Bhotshala complex and learning. Be with us. I'm going to go across to Vinod Bansal, spokesperson of the Vishwa Hindu Parishad. With us, thank you for your time. Your response to how do you look at what has now been said by court, restoring or rather saying that indeed this was the center of Sanskrit learning?
12: देखिए ये जो निर्णय है वो ये निर्णय किसी हिंदू समाज की विक्ट्री नहीं है. मैं ऐसा मानता हूँ ये देश की संस्कृति, देश के स्वाभिमान, देश की जो न्याय व्यवस्था और देश के संविधान की विक्ट्री है. ये विक्ट्री जो है वो सत्य की विजय है और असत्य का नाश है. आप देखिए कि जिस प्रकार से सैकड़ों वर्षों से हिंदू धार्मिक केंद्रों ही नहीं बल्कि हमारे संस्कृति के और महान केंद्रों को जिस तरह से तहस नहस करने की कोशिश की गई थी, उनके विरुद्ध एक बड़ा निर्णय है. हम वेलकम करते हैं इस डिसीजन को और ये मानते हैं कि भाई संपूर्ण हिंदू समाज को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को इसको अंगीकार करना चाहिए और होल हार्टेडली इसको एक्सेप्ट करते हुए, क्योंकि ये कोई मंदिर की मुक्ति का विषय नहीं है, सिर्फ कोई धार्मिक केंद्र की मुक्ति का विषय नहीं है, ये देश की संस्कृति और सांस्कृतिक जीवन मूल्यों की मुक्ति का भी विषय है.
7: जी.
12: अब भारत जो है ना सांस्कृतिक अभ्युदय की तरफ जा रहा है. हमें आशा है कि सब लोग इसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करेंगे. और ये देखिए सांस्कृतिक जो जीवन मूल्य हैं संपूर्ण भारत के एक ही हैं, कोई अलग नहीं है.
7: जी बिल्कुल.
12: पद्धति भिन्न हो सकती है लेकिन हम सब एक हैं और इसमें कोई भेदभाव का विषय नहीं है. हम ये नहीं मानते कि कोई मुसलमान की हार है, कोई हिंदू की जीत है. ये वास्तव में देश के संविधान, देश की पारदर्शी न्याय व्यवस्था और उन सभी लोगों को भी मैं नमन करता हूँ जिन्होंने जिनके सतत संघर्ष के कारण ये सब ये दिन आज देखने को मिला. अयोध्या और काशी के बाद में आप देखिए जिस तरह से ये जो गौशाला की मुक्ति हुई है और ये बड़ा बड़ा कदम है. और हमें पूरा विश्वास था, पहले से ही विश्वास था कि न्याय हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है तो निर्णय भी हमारे साथ ही होगा.
7: ये आपने एक जरूरी बात की कि कोई पक्ष के खिलाफ नहीं है, बहुत ही जरूरी है कहना, क्योंकि विनोद बंसल जी टेंशन्स और दुविधाएं तो होती ही है. इस समय लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी देखा जा रहा है धार डिस्ट्रिक्ट में. लेकिन ये भी बताएं कि कोर्ट का कहना कि अब सरकार के ऊपर है, एएसआई के ऊपर है कि ये जो संस्कृत लर्निंग सेंटर था.
12: मंदिर का चरित्र है, माँ सरस्वती माँ वाग देवी की जगह है. ये बात, ये आर्ग्यूमेंट हमारा कोर्ट ने अक्षर अक्षर इसको माना है. साथ ही साथ कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है और जो यहाँ पे गलत ढंग से नमाज होती थी कोर्ट ने उस आदेश को खारिज कर दिया, निरस्त दिया है. साथ ही साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी कहा है कि जो माँ वाग देवी माँ सरस्वती की प्रतिमा आज ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है उसको भी वापस लाने के लिए जो हम लोगों ने प्रत्यावेदन दिया है उसको सरकार कंसिडर करे. और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष यहाँ पे नमाज अदा करता चला आया है तो उनको धार शहर के अंदर ही कोई ऑल्टरनेट लैंड देने के लिए अगर वो ऐसा प्रत्यावेदन देते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो सरकार उस पर विचार करे.
13: हाँ विष्णु जी, एक बात बता दीजिए क्योंकि आपने ये कहा कि आपकी तरफ से जो भी आर्ग्यूमेंट दिया गया कोर्ट की तरफ से उसे माना गया है. अब ईएसआई की रिपोर्ट में क्या था, इस भोजशाला जिसको आप लोग मंदिर कह रहे थे क्या कुछ सबूत पाए गए थे जिसको कोर्ट ने भी माना है?
12: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा. एएसआई ने इस जगह का पूरा एक साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट किया ऑनरेबल जस्टिस धर्माधिकारी के 11 मार्च के ऑर्डर के बल पे. और उसके बाद एएसआई ने यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो पूरा परिसर है ये एक हिंदू मंदिर का परिसर है. यहाँ पे अलग अलग एएसआई को चिन्ह मिले, निशान मिले जो हिंदू मंदिर की में होते हैं. बहुत सारी ऐसे शिलालेख मिले, बहुत सारे ऐसे चिन्ह मिले, निशान मिले. माँ सरस्वती ओम सरस्वती नमः, गणेश जी की मूर्तियां प्रतिमा, तीर्थंकर की मूर्तियां प्रतिमा, ये सारी चीजें एएसआई को अपने सर्वे के रिपोर्ट में मिली. और फिर एएसआई ने एक कंक्लूसिव 2100 पन्ने की रिपोर्ट दी 98 डेज का सर्वे करने के बाद, जिसमें एएसआई ने ये बात सिद्ध की कि हाँ ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है. तो मैं इस फैसले को एक बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत बड़ा फैसला मानता हूँ और राम मंदिर के बाद ये दूसरा ऐसा एक फाइनल निर्णय है जो हाईकोर्ट की तरफ से आया है.
13: मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या विरोध जताया गया, वो आगे क्या उच्च अदालत की ओर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ?
12: अब देखिए मुस्लिम पक्ष उच्च अदालत की तरफ जाएंगे कि नहीं ये बात तो आप उनसे पूछेगा. पर जहां तक हमारा सवाल है, हमारी रिसर्च एकदम स्ट्रांग है और इंदौर हाईकोर्ट से आज हम जीते हैं और देखते हैं आगे लीगल कार्रवाई किसकी तरफ से क्या होती है।
13: विष्णु जी, हमने ये देखा है कि और भी कई मामलों में जिसकी आप पैरवी कर रहे हैं वहां पर भी आपने कहा है कि कोर्ट आपकी बात को सुन रहा है, वो सबूत देख रहा है जो आपने कोर्ट में पेश किए हैं। क्या आने वाले और भी कई ऐसे केसेस हैं जिनकी आप पैरवी कर रहे हैं वहां पर भी आपको लगता है कि ये फैसला एक मिसाल छोड़ सकता है?
12: बिल्कुल ज्ञान व्यापी का पैरवी चल रही है, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की पैरवी चल रही है, बंगाल में अदीना जो आदिनाथ मंदिर है जिसे अदीना मस्जिद कहा जाता है उसकी पैरवी चल रही है, विदिशा में जो हमारा बीजा मंडल का मंदिर है उसकी पैरवी चल रही है, कुतुब मीनार, ताजमहल, इन सारी जगहों की पैरवी चल रही है और समय आने पे कोर्ट के माध्यम से अपने लीगल आर्ग्यूमेंट के आधार पे हमें पूरी उम्मीद है कि हम सारी जगहों को मुक्त करा पाएंगे।
13: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: means.
1: But it's amazing how there are enough documents available. If one really digs through, there are enough documented evidence that, like our High Court here also said, there is architectural evidence.
0: There's architectural evidence, there is documentary evidence, and in each way, they've been able to establish, like at the Sri Ram Janmabhoomi in Ayodhya, the Hindus have been able to establish that they were worshipping there constantly, non-stop, establishing that chain. Similarly, here at Bhojshala, despite the fact that rules were brought in by the Archaeological Survey of India, and why were such rules brought in is another matter of investigation, that on Tuesdays Hindus can pray and on Fridays Muslims can pray, that leads to a permanent dispute. Law needs to decide it as per law, give it to whoever has been able to prove it is their place of worship, and here the Hindus have been able to do that, subject to whatever is decided by a superior court now.
1: Very interesting. Appreciate you joining us, Gaurav Sawant, with all the perspective updates and precisely why this case is so important. Now, what is the Muslim side saying to this when the court has said you can apply for an alternate land, you can go to a higher court as well? Here's what the Muslim side is saying.
2: कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में हमारी बात नहीं सुनी गई तो हाई कोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं लेकिन जहां पर हमारी बात नहीं सुनी गई तो उसको लेकर हम निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बिल्कुल एसआई की रिपोर्ट जब राम जन्मभूमि मामले में खारिज कर दी गई थी और उसके बाद भी यहाँ पर एसआई की रिपोर्ट मानी गई या नहीं मानी गई इसकी भी समीक्षा करेंगे और एसआई को जब सर्वे का आदेश दिया था तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आप फिजिकल एक्सकवेशन नहीं कर सकते उसके बाद भी जो वीडियो आया उसमें फिजिकल एक्सकवेशन है और जब फिजिकल एक्सकवेशन करा उन्होंने तो वहाँ पर से प्लास्टिक के गिलास और जो डिस्पोजल गिलास और स्पून वगैरह ये निकले और
1: On the location as they're celebrating, listen in, Ravish getting us these voices.
3: आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये देखिए चेहरे देखिए इनके पूरे तरीके से रंगे हुए हैं क्या कहेंगे तो ये फिलहाल यहाँ पे जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो प्रमुख लोग हैं वो सब यहाँ इकट्ठे हैं लेकिन इन सब के बीच में हम ये तस्वीर दिखाते हैं ये तमाम उन युवाओं की उन नौजवानों की है जो लगातार यहाँ पे मांग कर रहे हैं महिलाएं देखिए हम तो पुरुषों का तो दिखाया ये देखिए मंदिर के अंदर महिलाओं का जोश देखिए ये हिंदू पक्ष की महिलाएं हैं ये इनके भी चेहरे रंगे हुए हैं ये खुशी देखिए हम महिलाओं का पक्ष पहली बार सामने आएगा इसमें आप लोग लगातार मंदिर पर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे लेकिन अब ये फैसला आया है पुरुष तो बाहर होली खेल रहे हैं आप लोग के बीच में क्या माहौल है यहाँ
4: बहुत हम तो बहुत खुश है कि हमारी माँ जल्दी से जल्दी आ गई और हमारे पक्ष में फैसला हो गया बस हमारा रोज
5: ये ऐतिहासिक दिन है बहुत खुशी का दिन है कि हमारे भोशाला का जो फैसला है वो आ गया वैसे तो कोर्ट और इसकी जरूरत नहीं थी हर दीवार हर मंदिर मूर्तियाँ चिक चिक के कह रही थी कि यह हमारा मंदिर है पर जो भी है चलो ठीक है आज खुशी का दिन है ये तो अभी झांकी है काशी मथुरा बाकी है
3: वो एक अलग चीज है लेकिन हम बात करेंगे आप लोग बताइए आप लोगों ने आज रंग लगाया एक दूसरे को कि कितना बड़ा मौका है आप लोगों को और
4: कई साल का जो इंतजार था माँ जो लंदन में बैठे हैं वो आज हमारे धार में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है और मंदिर हमारा बनेगा बस बहुत जल्दी
6: प्रमाण आ गया है और सत्य की विजय हुई है भाई साहब तो अत्यंत देखो आप धार में हर्षोल्लास है और विजय हुई है तो मंदिर भी जल्दी बनेगा भारत माता की जय
5: आज भोशाला के भाग
3: आप देख सकते हैं ये तस्वीर काफी है ये बताने के लिए कि धार के लोगों के लिए धार के बाशिंदों के लिए इस फैसले की अहमियत क्या है पुरुष हो महिलाएं हो जैसे ही ये फैसला आया है ये एक दूसरे को रंग लगा करके इस तरीके से भजनों पे झूम करके इस फैसले पर अपनी खुशी जता रहे हैं पुरुष बाहर होली खेल रहे हैं महिलाएं अंदर भजन गा रही हैं और मध्य प्रदेश का अयोध्या जिस विवाद को कहा जाता था आखिरकार हाईकोर्ट ने आज उस पर पहला फैसला देते हुए इन तमाम लोगों के बरसों पुराने संघर्ष को एक जीत की मोहर आज दे दी है ऐसा इनका कहना और यही खुशी इनके चेहरे पर इनके हाव भाव पर साफ तौर पर देखी जा सकती है
1: Ishpal Singh getting us the ground sentiment. You heard the Muslim cleric and how they intend to go about it in the days to come. The court has said they can always apply for an alternate land or they can go ahead and, of course, file an appeal in a higher court. However, remember, this is one more dispute that has now been decided by the court about how the Bhojshala complex of the disputed area has been declared a temple dedicated to Goddess Saraswati and how, according to the ASI, the evidence that was put forth was there's been continued practice एंड सिंस द राजा भोज

2014 से जब से मोदी सरकार आई है, टोटल हमारे देश में 93 पेपर लीक हुए हैं 93, और इनमें अधिकतर पेपर डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बीजेपी की एनडीए की सरकारों में लीक हुए हैं। और अभी पिछले एक दो दिन से खबरें आई हैं, ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है इसका एपिसेंटर भी राजस्थान है, और इनमें जो दो चार लोगों के ऊपर सुई गई है वो भी बीजेपी के नेता दिखाई देते हैं। तो इससे शक तो पैदा होता है कि क्या इन सारे पेपर लीक में इनके नेता शामिल हैं, या इनकी पार्टियों का या सरकारों का संरक्षण है, या सीधे सीधे इनके नेता ही पेपर लीक करवा रहे हैं, उन्हीं का धंधा ये है। और अगर ऐसा है तो सीबीआई की जांच इसमें बेचारी क्या करेगी, सीबीआई इसमें बेचारी क्या करेगी।

0: Now, according to an arrangement in 2003, the Hindus were permitted to perform puja at the complex on Tuesdays from sunrise to sunset, while Muslims were free to offer namaz on Fridays from 1 p.m. to 3 p.m. The High Court said the Muslim community may approach the Madhya Pradesh government for allotment of separate land within the Dhar district for construction of a mosque or prayer facility. The bench said this could be considered in order to secure the religious rights of the Muslim community and ensure complete justice between the parties. It added that such allotment, if sought through a proper application, should be made according to law and could include land for associated religious facilities and also for the administration of the said place. Scientific survey report and ASI report, the High Court, which had ordered the ASI to conduct a scientific survey at the Bhotshala temple complex on the 11th of March 2024. The ASI began the survey on the 22nd of March 2024 and after a detailed 98-day-long exercise submitted its report to the High Court on the 15th of July. And this is a report that's over 2,000 pages. The ASI indicated that massive structures dating back to the reign of the Parmar kings of Dhar, they predated the mosque and that the current disputed structure was built using repurposed temple components. Now, a lot of reactions that are coming in on this. Let me quickly get you the reaction of Waqar Sadiq on Bhotshala. Let me get you other reactions, both of the Muslim side, the Hindu side, and on the next course of action. What's the plan of action? Listen in.
1: हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गुमेंट के खिलाफ तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे और मुझको लगता है कि सारे आर्गुमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे
2: ये न्यायालयीन लड़ाई 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के हरिशंकर जी जैन विष्णु जी जैन रजना अग्निहोत्री जी और विनय जोशी जी के साथ चालू हुई थी जिसके अंदर बाद में ASI ने वहाँ का भोजशाला का सर्वेक्षण करा रिपोर्ट पेश हुई और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये सुनवाई का क्रम जारी रहा और आज इस फैसले का हम स्वागत करते हैं हमारी पूरी आस्था भारत के संविधान में और न्यायपालिका में है और साथ ही जो है जो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज की आशा और अपेक्षा के अनुरूप दिया है
3: अभी जो लोग इसको अपनी जीत मान रहे हैं जीत नहीं मानना चाहिए ठीक है एक निचली अदालत का फैसला है अपर कोर्ट जाएंगे अपर कोर्ट जो भी तय करेगा मैं मुसलमानों से एक अपील और करना चाहता हूँ इसमें भावुक होने की जरूरत नहीं है इसमें अग्रेसिव भी होने की जरूरत नहीं है जैसे हमने बाबरी मस्जिद की लड़ाई को लड़ा है खुलूस के साथ ईमानदारी के साथ प्रेम के साथ हम इसी तरह ये लड़ाई भी लड़ना चाहते हैं अगर कोर्ट की हमारे देश की अदालत ये कह देती है कि तुम्हारा अधिकार यहां भी नहीं है तो हम उसको भी मानेंगे क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेट है भी नहीं कोई रास्ता भी नहीं है
4: तो ये पूरे मध्य प्रदेश की नहीं ये पूरे देश की जीत है राम मंदिर के बाद ऐतिहासिक फैसला है इस फैसले पर सनातनियों को और हिंदुओं को उत्साह मनाना चाहिए 1010 से लेकर के 1055 तक मैं सन की बात कर रहा हूं सन 1010 से सन 1055 तक राजा भोज के द्वारा स्थापित सरस्वती का ये स्थान जिसे कालांतर में जो पूरे भारतवर्ष में होता है मुस्लिम आतताइयों ने अपना स्थान बना लिया ये सबसे पहले तो स्वागत योग्य फैसला है इसमें जो लोग लगे हैं सब साधुवाद के पात्र हैं
5: लंबे समय तक धार और उसके आसपास के सनातनियों ने संघर्ष किया इसके बाद आज न्यायालय के द्वारा उनको जीत हासिल हुई है ये कैसी विटंबना है कि जो दुनिया को न्याय देता था उस परमात्मा को भी आज न्यायालय के शरण जाना पड़ता है पर फिर भी न्यायालय के प्रति जो हमारी उदारता है न्यायालय के प्रति जो हमारा दृढ़ विश्वास है कि सत्य जीतेगा सत्य पराजित नहीं हो सकता आज उस सत्य की जीत पर मैं करोड़ों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद भी उन बलिदानी सूरवीरों को नमन करता हूं और सनातन की ये जो विजय हुई है ये जो जीत हुई है ये जो न्याय मिला है इस न्याय का हम सम्मान करते हैं
0: AIMIM चीफ एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर

0: A hole in the common man's pocket anymore. From CNG to LPG, the ripple effect is now threatening household budgets across the country. As global tensions push fuel prices higher, concerns are growing over inflation, transport costs, and daily survival. The big question is, how much more burden can the Aam Aadmi absorb?
1: वेतन बढ़ रही है, रेट बढ़ी जा रहे हैं मार्केट के अंदर हर एक आइटम के।
2: जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा।
3: इससे बहुत असर पड़ेगा जी, सीधा फार्मिंग करने हैं साढ़े तो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा जी।
4: मजबूरी है क्योंकि वार चल रही है, उसका असर तो पड़ेगा सबको।
5: कल दूध इतना महंगा हो गया तो महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है हर तरह से।
6: गवर्नमेंट के पास भी ऑप्शन लेस है क्योंकि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को भी अब ना करे तो भी प्रॉब्लम है।
7: द लॉन्ग एक्सपेक्टेड फ्यूल प्राइस हाइक इज फाइनली हियर। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैव अनाउंस्ड अ 3 रुपी हाइक इन फ्यूल प्राइसेस एंड अ 2 रुपी इंक्रीज इन सीएनजी प्राइसेस। द प्राइस हाइक इज सेट टू हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट लीडिंग टू प्राइस राइज। India today tracked the impact from every major city after the fuel price hike.
8: Diesel, petrol prices have been hiked by around 3 rupees. If you talk of Kashmir, the latest today's price of petrol is 104.04, means around 3 rupees 9 paisa. The prices have increased, and as far as diesel is concerned, it's around... A hike of 2.98 rupees.
9: In Delhi, if you are buying petrol this morning, it will cost you 97 rupees 81 paisa. And for diesel, you will have to spend 90 rupees 71 paisa. This increase for CNG is nearly 2 rupees.
6: Fuel prices have been hiked across India. And I'm coming to your place from Bengaluru, a petrol station or a fuel station where you can see people coming here to fill in their tanks. Rupees 3 is the what the hike has been put in place right now. The price right now per litre in Bengaluru is somewhere around 106 rupees. So you can see 106.22 per litre of fuel, and diesel stands at 94.09.
7: The Aam Janta shared their concerns over the increased financial impact of the fuel price hike.
10: सर दो दिन का संकेत से तो नहीं होगा, दो दिन में आप संकेत दे देंगे तो आदमी तो परेशान हो जाएगा।
11: हमें बहुत परेशानी का सामना है, पैसे बढ़ गए तो नुकसान है हमारा ही।
12: पेट्रोल बढ़ेगा, सीएनजी बढ़ेगी, सब चीज बढ़ेगी तो सामान का भी ऐसा भी बढ़ेगा।
7: एंड द हाइक कम्स जस्ट डेज आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गेव द मंत्रा ऑफ सेविंग एंड स्पेंडिंग वाइजली एंड अर्ज्ड पीपल टू कंजर्व फ्यूल।
13: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए।
7: द प्राइम मिनिस्टर लेड बाय एग्जाम्पल एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द साइज ऑफ हिज कॉन्वॉय टू सेव फ्यूल। सेवरल अदर पॉलिटिकल लीडर्स फॉलोड सूट। जस्ट डेज अगो ऑयल कंपनीज हैड हाइक कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर प्राइसेस बाय 993 रुपीज। If the West Asia crisis doesn't end soon, citizens may have to brace for even tougher times ahead. With Nagarjun Dwarkanath, Amit Bharadwaj, Kamaljeet Kaur Sandhu, Aseem Bassi and Meer Farid, Bureau Report, India Today.
0: Once again, the Aam Aadmi is feeling the pinch. The government has announced a 3 rupee hike in petrol and diesel prices. The fuel price hike has now triggered a political storm across the country. Congress has slammed Prime Minister Modi with an inflation man jibe. Meanwhile, the BJP has defended the move, claiming India has witnessed one of the lowest

तो मेरा जेंजी से सीधा सीधा, देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है कि ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है। ऐसे हर साल आप देखो, 2017 में पेपर लीक हुए, उसके 4 साल बाद 2021 में हुए, उसके 3 साल बाद 2024 में हुए, उसके 2 साल बाद 2026 में हुए, अब उसके 1 साल बाद 2027 में होंगे, और हर साल पेपर लीक होंगे अगर आपने कुछ नहीं किया तो। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेंजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेंजी पे पूरा भरोसा है। ये देश आपका है, इस देश के नेताओं को इस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है।

0: using repurposed temple components. Now, a lot of reactions that are coming in on this. Let me quickly get you the reaction of Vakar Sadiq on Bhotshala. Let me get you other...
1: ...का क्रम जारी रहा और आज इस फैसले का हम स्वागत करते हैं. हमारी पूरी आस्था भारत के संविधान में और न्यायपालिका में है और साथ ही जो है जो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज की आशा और अपेक्षा के अनुरूप दिया है.
2: अभी जो लोग इसको अपनी जीत मान रहे हैं, जीत नहीं मानना चाहिए. ठीक है, एक निचली अदालत का फैसला है, अपर कोर्ट जाएंगे, अपर कोर्ट जो भी तय करेगा. मैं मुसलमानों से एक अपील और करना चाहता हूँ, इसमें भावुक होने की जरूरत नहीं है, इसमें अग्रेसिव भी होने की जरूरत नहीं है. जैसे हमने बाबरी मस्जिद की लड़ाई को लड़ा है, खुलूस के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रेम के साथ, हम इसी तरह ये लड़ाई भी लड़ना चाहते हैं. अगर कोर्ट की हमारे देश की अदालत ये कह देती है कि तुम्हारा अधिकार यहां भी नहीं है तो हम उसको भी मानेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेट है भी नहीं, कोई रास्ता भी नहीं है.
3: तो ये पूरे मध्य प्रदेश की नहीं, ये पूरे देश की जीत है. राम मंदिर के बाद ऐतिहासिक फैसला है. इस फैसले पर सनातनियों को और हिंदुओं को उत्साह मनाना चाहिए. 1010 से लेकर के 1055 तक, मैं सन की बात कर रहा हूं, सन 1010 से सन 1055 तक राजा भोज के द्वारा स्थापित सरस्वती का ये स्थान, जिसे कालांतर में जो पूरे भारतवर्ष में होता है मुस्लिम आतताइयों ने अपना स्थान बना लिया. ये सबसे पहले तो स्वागत योग्य फैसला है. इसमें जो लोग लगे हैं सब साधुवाद के पात्र हैं.
4: लंबे समय तक धार और उसके आसपास के सनातनियों ने संघर्ष किया, इसके बाद आज न्यायालय के द्वारा उनको जीत हासिल हुई है. ये कैसी विटंबना है कि जो दुनिया को न्याय देता था उस परमात्मा को भी आज न्यायालय के शरण जाना पड़ता है, पर फिर भी न्यायालय के प्रति जो हमारी उदारता है, न्यायालय के प्रति जो हमारा दृढ़ विश्वास है कि सत्य जीतेगा, सत्य पराजित नहीं हो सकता, आज उस सत्य की जीत पर मैं करोड़ों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद भी उन बलिदानी सूरवीरों को नमन करता हूं. और सनातन की ये जो विजय हुई है, ये जो जीत हुई है, ये जो न्याय मिला है, इस न्याय का हम सम्मान करते हैं.
0: AIMIM chief and member of parliament barrister Asaduddin Owaisi cries foul over this Bhotshala verdict. Asaduddin Owaisi, who is a barrister at law, he says that setting aside facts, the judgment was given on belief. Asaduddin Owaisi insists that for the past 700 years, namaz was being offered at the masjid. This verdict, according to Asaduddin Owaisi, is a violation of the Places of Worship Act 1991, and he believes that the judgment is erroneous, and he hopes that when this matter is taken up in the Supreme Court, they will get justice on this. I'll get you more on the story, but let's listen in to Asaduddin Owaisi.
5: मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है, जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है. और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था, ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा. आज देख लो आज क्या हो रहा है. जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी, अब रिलीफ भी आइडेंटिकल है, कंप्लीटली रिलीफ आइडेंटिटिकल है कि वहां पर पूजा होगी, नमाज नहीं होगी. मैं 700 साल से वहां पर नमाज पढ़ रहा हूं. कोई PIL डालता है 226 में और कोर्ट कैनॉट पास एन ऑर्डर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल, आप टाइटल दे देते हैं उनको जबकि सिविल सूट चल रहा है उसका.
0: And joining me now on this big story is the man of the moment, Advocate Vishnu Shankar Jain, lawyer of the petitioner, someone who's campaigned very hard. He got facts together and then approached courts. Mr. Vishnu Shankar Jain, welcome. What points did you rely on to decisively put to rest this controversy, whether this was Ma Saraswati's temple or a Khalam Mola mosque? Because Asaduddin Owaisi, and you just heard him, he seems to indicate that this is bad in law and is a judgment that's been given on

0: Good evening. You're watching India First. I'm Gaurav Sawant. It's a historic verdict by the Indore bench of the Madhya Pradesh High Court on the Bhojshala complex. The court, after perusing documents, going through the Archaeological Survey of India report, has categorically declared the Bhojshala complex a temple. And this is a division bench of the High Court. The court has also cancelled the Archaeological Survey of India order that permitted Muslims to offer namaz at the Bhojshala temple complex on Fridays. The division bench, a two-judge bench of the Madhya Pradesh High Court, the Indore bench, declared that the Bhojshala complex is a temple, whether it's on a Tuesday or a Friday. It quashed the ASI circular that permitted Muslims to offer namaz there on select days. A division bench also said that the Muslim side is free to approach the Supreme Court and seek separate allotment of land for a mosque to be built in the same Dhar district, but not the same place. The court said, and I quote, "We have found that nothing ever interrupted the continuity of Hindu worship at this site. We record this conclusion that historical literature and records established that the character of the disputed area was that of a Bhojshala, a center of Sanskrit learning associated with Raja Bhoj of the Parmar dynasty." Unquote. Regarding the demand of the Hindu side for the repatriation of the idol of Ma Saraswati, of Vag Devi, that's currently at a London museum in the United Kingdom, the court directed the government to consider this request. Also noted that the Muslim side is free to present its views before the government as well. Not just courts, but the government as well. Vakar Sadiq, the Sheher Khazi or the head cleric of Dhar city, said they will study the judgment and challenge it in a superior court. The Archaeological Survey of India and its report filed on the 15th of July 2024 in the chapter titled Brief Findings of the Survey said, citing scientific examination of the archaeological remains, that the retrieved architectural remains, sculptural fragments, large slabs of inscriptions with literary texts, inscriptions on pillars suggest that a large structure associated with the literary and educational activities existed at the site. The Hindus said that the Bhojshala complex is a temple dedicated to goddess Vag Devi, Ma Saraswati, the goddess of knowledge. The Muslim side had contended that it is the site of the Kamal Mola Mosque. Now, according to an arrangement in 2003, the Hindus were permitted to perform puja at the complex on Tuesdays from sunrise to sunset, while Muslims were free to offer namaz on Fridays from 1 p.m. to 3 p.m. The High Court said the Muslim community may approach the Madhya Pradesh government for allotment of separate land within the Dhar district for construction of a mosque or prayer facility. The bench said this could be considered in order to secure the religious rights of the Muslim community and ensure complete justice between the parties. It added that such allotment, if sought through a proper application, should be made according to law and could include land for associated religious facilities and also for the administration of the said place. Scientific survey report and ASI report, the High Court, which had ordered the ASI to conduct a scientific survey at the Bhojshala temple complex on the 11th of March 2024. The ASI began the survey on the 22nd of March 2024 and after a detailed 98-day-long exercise submitted its report to the High Court on the 15th of July. And this is a report that's over 2,000 pages. The ASI indicated that massive structures dating back to the reign of the Parmar kings of Dhar, they predated the mosque, and that the current disputed structure was built using repurposed temple components. Now, a lot of reactions that are coming in on this. Let me quickly get you the reaction of Vakar Sadiq on Bhojshala. Let me get you other reactions, both of the Muslim side, the Hindu side, and on the next course of action. What's the plan of action? Listen in.
1: हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे. हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गुमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. उसको सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे. और मुझको लगता है कि सारे आर्गुमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे.
0: ये न्यायालयीन लड़ाई 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के हरिशंकर जी जैन, विष्णु जी जैन, रंजना अग्निहोत्री जी और विनय जोशी जी के साथ चालू हुई थी, जिसके अंदर बाद में एएसआई ने वहां का गौशाला का सर्वेक्षण करा, रिपोर्ट पेश हुई और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये सुनवाई का क्रम जारी रहा. और आज इस फैसले का हम स्वागत करते हैं. हमारी पूरी आस्था भारत के संविधान में और न्यायपालिका में है, और साथ ही जो है जो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज की आशा और अपेक्षा के अनुरूप दिया है.
2: अभी जो लोग इसको अपनी जीत मान रहे हैं, जीत नहीं मानना चाहिए. ठीक है, एक निचली अदालत का फैसला है, अपर कोर्ट जाएंगे, अपर कोर्ट जो भी तय करेगा. मैं मुसलमानों से एक अपील और करना चाहता हूँ, इसमें भावुक होने की जरूरत नहीं है, इसमें अग्रेसिव भी होने की जरूरत नहीं है. जैसे हमने बाबरी मस्जिद की लड़ाई को लड़ा है खुलूस के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रेम के साथ, हम इसी तरह ये लड़ाई भी लड़ना चाहते हैं. अगर कोर्ट की हमारे देश की अदालत ये कह देती है कि तुम्हारा अधिकार यहां भी नहीं है, तो हम उसको भी मानेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेट है भी नहीं, कोई रास्ता भी नहीं है.
3: तो ये पूरे मध्य प्रदेश की नहीं, ये पूरे देश की जीत है. राम मंदिर के बाद ऐतिहासिक फैसला है. इस फैसले पर सनातनियों को और हिंदुओं को उत्साह मनाना चाहिए. 1010 से लेकर के 1055 तक, मैं सन की बात कर रहा हूं, सन 1010 से सन 1055 तक राजा भोज के द्वारा स्थापित सरस्वती का ये स्थान, जिसे कालांतर में जो पूरे भारतवर्ष में होता है मुस्लिम आतताइयों ने अपना स्थान बना लिया. ये सबसे पहले तो स्वागत योग्य फैसला है. इसमें जो लोग लगे हैं सब साधुवाद के पात्र हैं.
4: लंबे समय तक धार और उसके आसपास के सनातनियों ने संघर्ष किया, इसके बाद आज न्यायालय के द्वारा उनको जीत हासिल हुई है. ये कैसी विटंबना है कि जो दुनिया को न्याय देता था उस परमात्मा को भी आज न्यायालय के शरण जाना पड़ता है, पर फिर भी न्यायालय के प्रति जो हमारी उदारता है, न्यायालय के प्रति जो हमारा दृढ़ विश्वास है कि सत्य जीतेगा, सत्य पराजित नहीं हो सकता, आज उस सत्य की जीत पर मैं करोड़ों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद भी उन बलिदानी सूरवीरों को नमन करता हूं. और सनातन की ये जो विजय हुई है, ये जो जीत हुई है, ये जो न्याय मिला है, इस न्याय का हम सम्मान करते हैं.
0: AIMIM chief and member of parliament barrister Asaduddin Owaisi cries foul over this Bhotshala verdict. Asaduddin Owaisi, who is a barrister at law, he says that setting aside facts, the judgment was given on belief. Asaduddin Owaisi insists that for the past 700 years, namaz was being offered at the masjid. This verdict, according to Asaduddin Owaisi, is a violation of the Places of Worship Act 1991, and he believes that the judgment is erroneous.